ना ही वापस बुलाया, ना कोई चिट्ठी पाई। मन तड़फद अगे ता एक मिनट भी पिता गुरु तू दूर नहीं सन रहंदे, पर हुण ता किन्ने दिन बीत गए, कोठे ते खलोते ने ओ राह पे तकदे ने।

रास्ता देखे पर रास्ता खाली दिखे कोई सुनिया लेके नहीं आया ते अखां विच जल भर आया अथरू किरण लग पे कि हाली भी कोई सुनिया।

चिट्ठी लिखन बैठे पर कहंदे ने मना अपनी सुख सांद लिखा पर मेरा ते मन तड़फदा पिता गुरु दी सुख सांद लिखा ओ ता हमेशा ही सुख विच ने फिर की लिखा चिट्ठी विच कहन लगे मना क्यों ना अपने मन दी तड़फ लिखा इस चिट्ठी दे विच ते की लिखे।

नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा, क्यों को कढे गहना। नानक बिनवे सो किछ पाइए पुर।

उस बाघ के अंदर सोपण किस तरह है? तो उद्धव उद्धव करे दिया जी उसको कमान दिया सुख पुण्य उसी उत्तम की है। अपनी तरह में सुख का नहीं छड़े दूर मेरे उचल के गुरु की अंतिम कर सर्वत माई पाई आप गुरु भी गोद में ये थोड़ा उत्तम कई कह रहे हो कोई साढ़े वर्ष थोड़ा जो गुरु प्रेरेगा गुरु कवे या साधु द्वारे जाऊ गुरु की कृपा होगी तो बाणी पढ़ ओरी तो सदन गुरु कदे भी कहता बाणी ना गुरु नहीं कहता कि सत्संग में ना हुज्जत है मन रख नहीं गुरु तो प्रेरद है सिद्ध जाए बजे सत्संग भी जिथे हर साल हर नाम बिना ये ना करते बहाने कि मेरे की बात आपे गुरु माणी पढ़ाएगा आपे अमर चढ़ेगी कदे नहीं किया भी गुरु आपे रोटी खवाएगा और वास्ते सारा उपराना करते कम भी करते सारी समग्री भी करने जाके प्रशादा तैयार होंगे अच्छे से प्रशादे वास्ते उद्धव है आत्मक भोजन वास्ते भी जो तुम ठीक है उद्धव करें दिया जी उसको कमाव दिया सुख पुंच त्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत कमाई कर ये सिख का कर्म तीसरा कर्म है उस वाहगुरु का सिमरन नानक उतरी चिंत जी चिंता नहीं अब सानू हर वेले छाड़ दी रही कल कहते दूर हो गया कल जी का पिता जी ने तो सिख को महान उद्यम दिता है विकास सिंह थोड़े उद्यम दिया तो दुनिया की धड़कन पै पंजाब की धरती तुम किस तरह सुधारे उपजवाला बनाया सारे देश को अन्न मिलता है इसी मन टेक्निकल व्यू के नाल गुरु ने थोड़े उत्ते बड़िया बखी दुनिया ने यह सिद्ध कर दिया है ये सारे देशवासी खास करके गुरु के सिखा के अंदर महान वासी जेड़े काम हाथ पाते चढ़िया ये गुरु ने नानक नाम चढ़ी सदा क्योंकि नानक के नाम ना ही बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज के दो अर्थ करते नानक नाम चढ़ी कलम जिन्हें को धन गुरु नानक पातशाह जी का नाम है और भी सदा चढ़ती कर या नानक नाम चढ़ती कला जिन्हें को गुरु का नाम है और चढ़ती कला च रह के किसी का बुरा नहीं सोचता तेरे भाने सर्वता किरत करनी है सिमरन धर्म की किरत यह भी बंदगी बाणी पढ़नी है वाहेगुरु का जाप करना यह भी बंदगी दान पुण करना यह भी बंदगी बाणी की लिखा कार खाए के सत्तो दे नानक रहा पछाने नानक चुनिया खटियां जे भर जाने कोय सुरते चुनी ज्ञान की जोगी का जप
योगी की चुनी कहनी है जटी सुरते चुनी ज्ञान की योगी का जत होए राजे चुनी न्याओ की फिक्र ही का तत् दान जस्ती का तरण में दान सुन दान सुनती पवित्र करके भी माया डंग मारन लग जाती बहुत ही माया है जी डंग मार दी है किस तरह होमे आ जाए कईयों ने माया का ही मंत्र माया का ही मान पर नहीं ये तो वाहगुरु की बख्श ये तो वाहगुरु की दात ये वाहगुरु की अर्पण कर दे रही पानी चलता पवित्र रहा है तन चंगे पास गुरु के लेखे लगता रहे तो वो सुखदाई है दान पुन करना है सिमरन सत्संग करके है ये भी सिमरन स्वादन स्त्री पति की सेवा कर रही है ये भी बाबा जी बच्चे कर दे ये कोई बीबी तारे माड़ा फेर नहीं रोटी का टाइम हो गया प्रशादा तैयार नहीं किया पति घर आए भगवान प्रशादा तैयार हो क्योंकि टाइम है रोटी का खाने तो उन्हें कहा स्वामी मैं तो नाम से जपती रोटी आप पका के खाई बाबा जी कहते थे इसका नाम नहीं है ये मन तेरी माड़ा फेरी ये मनमत है नाम की है ये रोटी का टाइम हो गया तो अपने पति वास्ते थोड़ा प्रशादा त्याग करके पत्नी क्योंकि कम कर दिया या उन्हें कम किया तो मेरे भोजन त्याग करना यह भी सिमरन है बाणी भी पढ़नी है हर टाइम सतगुरु जी पहले से हर कोई जागे किसी महापुरुष ने किए सारी दुनिया सारे जाग रही दूजे पैरे भोगी तीजे पैरे तस्कर जागे तस्कर कहते चोर तीजे पैरे तस्कर जागे चौथे पैरे जो वो समय योगी ने जागे गुरसिख ने जाग पिछ लड़ाती जागर जाके की करना नाम दान इशनान जरा इशनान करना ते बह के जपना सपना दान को नाम दान इशनान जराए फिर मिठा बोलना नहीं विचरन नाम जप के बाणी पढ़ के नहीं कि लोगों ने झगड़ी करता नहीं करता तेरे वर्गा तो नहीं मिठा बोलना ये अमृत पीता है तो रचना मिठास पड़ी है मिठा बोलन निर्चल निमदार कर गुरु के सिख का मन नीवा रोजगार मत अजकल उल्ट चल गया तो मन मिठा हो गया तो मत नहीं तो ताइ सिखी नहीं जी खुशबू है साढ़े अंदरों का मिठा बोलन निर्चल

के विषय से की थी। बाबा रूप सिंह जी महाराज बेटी की थी। महाराज आपके पत्र बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा खाओ जिन्हें नाम सारा दिन शरीर पीड़े जा रहे डिखाड़े जाते वो भी कोई खाने। बाबे लिखे हैं सबरत मिठे बनिए सुनिए सालोरे हर तुलसी मुख बोलने मारन नाल किए छत्ती अमृत भावे जाको नजर करे बाबा होर खाना तुगी खुआर जिन खाते तन पीड़िए मन में चले विकार वो खाने की खत जे मन विकार ही बने आए हर वेले पीड़े ही नहीं। मुसलमान रोजे रखते सिख रोज रोजा रखते रोजे का मकसद यह नहीं कि खुदा आप कोई सोचे और रोजे का रखने का मतलब है शरीर की शुद्धि शरीर की शुद्धि। डॉक्टर को जाने डॉक्टर साहब बुखार हो गए क्यों हो गया खट्टे निकार आते सर एक दिन फाका कर रहे दवाई मिल गई अपने आप पैदा ठीक हो जाता तो इसी तरह रोजा रखना वर्त रखना ये नहीं भी कोई कर्म नहीं सिर्फ शरीर की शुद्धि वाले शरीर ठीक हो जाता है पर गुरु सिख तो रोज रोजा रखते रोज वर्त रखते तो कि थोड़ा थोड़ा शरीर ठीक है डॉक्टर को जाने नहीं पैदा। बाबा जी ने वचन किया इतना थोड़ा खाओ जिदे नाल शरीर बोझली ना बने तो इतना थोड़ा सौ जिदे नाल साडा अमृत सौ की ना इतना अलम आहार अलम सी थोड़ा सौना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए एक बहुता नहीं बोल सारा दिन गप्पा ही नहीं मैं थोड़ा यह भी गुरमत है फिर आल खाए सुकृत करे काला काल के सुकृत करे वड्डा होए ना आप कराए कि गुरु ने वड्याई बख्शी है तो जनाऊंगा नहीं वडेरिया गुरु वालों आदियां फिर हमें च नहीं आता अरदास करता तुझा के अरदास तुम्हारी जियो फिर सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नहीं ये गुरु बख्शिश तो गुरु दी वड्डा होए ना आप कराए फिर पैसा निकल सात संगत मिल गांव दे रात दे निचल कर ये दो टाइम दे मेरे किरत भी करनी कमकार भी करना पर अमृत वेले ते शाम ताकि गुरु नाल जुड़ने हैं जिस तरह तुम्हें जुड़ जुड़ के करना की है शब्द सुरत पर जा करे गुरु ने शब्द ही विचार सुनी तो कर सतगुरु परचे मन पर जाए फिर भाई साहब जी कहते हैं सिख का जीवन आस्था विच निराश आस्था विच रहा हो क्योंकि जे आशा आशा रखिए तो जे ना पूरी होवे तो मन बड़िया चाहिए कर चला आशा विच निराश ते सिख है उदम करे जिस तरह तुसी उदम की बंदगी का स्वरूप की है। बाबा जी बचन करते सन कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में सा हो बंदगी का स्वरूप हुक्म है आपको क्योंकि स्वरूप जितने तक स्वरूप लगने ना ना बढ़े उतने तक मन जुड़ता है तो निशाना कोई नहीं है ना सब तो बदली का स्वरूप जोड़ा है वो है हुक्म सिख जोड़ा है किरत भी करता है नाम भी जपता है बच्चों नाल भी प्यार करता है सैर भी करता है हंसता भी है तंगे कपड़े भी पाता है गुरु नाल भी जुड़ता है ये सब गुरु का रूप फिर हुक्म मनिए होवे परवान का खत्मे का है साहबा ने तीन दिन वास्ते किया निर्णया सैयद बुद्धू शाह को आ गया चिट्ठी लैके बुद्धू शाह छेती चिट्ठी पढ़ के सुना क्योंकि मैं घर पहुंचा सैयद बुद्धू शाह ने गुरु का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया और लिखे आया कि तुम कर्म करो।

हे वाहिगुरू, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेहर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र धन कर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणिया दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे।

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

साहब की सेवा की ता गुरु अमरदास बने। इसे तरह गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अमरदास पातशाह की सेवा की ता रामदास तो गुरु रामदास बन गए। आप दा जन्म लाहौर होया, कुंगनिया वेचन वास्ते जाया करदे सन। होर भी बच्चे कुंगनिया वेचन जांदे ने, कई ता बड़े कहंदे ने कुंगनिया लै लो, करारिया कुंगनिया, मिर्च मसाले वालिया कुंगनिया। पर गुरु रामदास जी जिन्हां दा पहला नाम जेठा सी, चुप करके बैठे रहंदे। एक दिन एक साधां दी मंडली आई, कोल ही नदी सी, उन्हां इशनान कीता। भाई जेठा जी नूं कहन लगे, काका सानू कुंगनिया खवा, पर साडे कोल पैसे कोई नहीं। कुंगनिया खवाईयां ने उन्हां साधां ने बड़ियां आसीसां दित्तियां कि काका तू बड़ा वड्डा आदमी बनेगा, बड़ा वड्डा तेरा दरबार होवेगा, अनेकां राजे महाराजे तेरे दरबार आके तेरे चरणां ते मत्था टेकिया करनगे, तेरे कोल दुनिया दे लोक दातां लिया करनगे, तू लोकां दे भंडारे भरिया करेगा। पता नहीं किन्ने क वार उन्हां ने दित्ते ने, खाली शाबा लैके घर आ गए ने। पुछया कि बेटा सारा शाबा खाली है, लगदा सारे छोले विक गए ने। भाई जेठा जी कहन लगे, विक ता गए ने पर उधार, उन्हां साधां कोल पैसे नहीं सन, पर उन्हां आसीसां बड़ियां दित्तियां, एक काम करते रहे। जवान होए, माता पिता सुरगवास हो गए ने। आपने जिथे एक कुंगनिया वेचण दा काम कीता, उथे मन विच परमेश्वर दे चरणा दा प्यार भी है। अपने घरों चले ने, संगता दे नाल गोविंदवाल साहब आए ने, गुरु अमरदास पातशाह दे दर्शन कीते, ता हुण चित वापस जान नूं नहीं करदा, इत्थे ही रह के हुण सेवा करन लग पए ने, दिन रात सेवा करदे ने, कुंगनिया भी वेचदे ने, जो कमाई हुंदी है लंगर विच पा दिंदे ने, दिन रात सेवा कर रहे ने। ते बाणी कहंदी है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुरु का मन मन्ने। ओ सेवा सफली है जेड़ी सेवा कीती है, गुरु दा मन प्रसन्न हो जावे। ते जदू इंसान मन करके सेवा करे, सेवा करदिया ओ इंसान किथे दा किथे जा पहुंचदा। गुरु अमरदास पातशाह अपने आसन ते बैठे हैं, ता गुरु के मैल कहन लगे, पातशाह सारी दुनिया दा आपनु फिकर है, पर कदी अपने घर दा भी ख्याल करो। गुरु साहिब जी कहन लगे, भाई दसो की ख्याल करिए घर दा। तां माता जी ने कहा, महाराज अपनिया बीबियां भी जवान ने, इन्हां वास्ते वर लभो ताकि इन

जी हो गए ने ते सेवा करन लग पए, दिन रात सेवा कर दे ने। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन, अते माता पानी जी इशनान करा रहे सन, चौंकी दा पावा टुट

चौंकी दा पावा टूट गया ते मैं अपना पैर थले दे दिता कि मता आप जी दा ध्यान ना भंग हो जाए ते मेरे पैर दे विचों ए खून निकल रहा है जिद नाल पानी दा रंग लाल हो गया। तो गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न हुए, कहन लगे बेटा पानी मंग तेन की चाहिए। क्या पिता जी आप दा दिता बहुत कुछ है, उस अकाल पुरख दा दिता बहुत कुछ है, किसी चीज की इच्छा नहीं। महापुरुषां दे तीन वचन हुंदे ने। तीसरी वारी क्या बेटा कुछ मंगो बड़े

कि ये घर की गद्दी घर विच रवे। तां गुरु साहिबां ने कहा ये चीज मिलता जाएगी पर ये वास्ते देना बहुत कुछ पवेगा, सारा सरबंस वारना पवेगा।

तीन सपुत्रा ने जन्म लिया, वड्डे पृथ्वी चंद, छोटे महादेव अते उन्हां तों छोटे गुरु अर्जन देव पातशाह। पर तिन्हां पुत्रां दे सुभा बड़े अलग सन। वड्डे पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा मायावल माया वाला सुभा, उन्हां तों छोटे महादेव उन्हां नूं दुनिया दे नाल कोई सरोकार जिवें नहीं। अते तीसरे गुरु अर्जन साहब जिन्हां दे मन विच सेवा भाव अते परमेश्वर दे चरणां दा प्यार, हर वक्त गुरु रामदास पातशाह दे कोल बैठे रहना, इस वास्ते मैं दूर होवां। पिता गुरु रामदास नूं की पता है कदों लोड पै जाए ओ आवाज मारन, मैं दूर होवांगा। कोल इस करके रहिंदे सन कि पिता नूं इंतजार ना करनी पवे, जदों हुक्म करन मैं उदों सेवा कमा लवां। ओ गुरु रामदास जिन्हां ने ओ नगरी संसार नूं दित्ती कि जिस जगह अज भी जे कोई इंसान मन करके इशनान करदा है, गुरु रामदास दी वसाई नगरी अमृतसर सरोवर विच तां अपने आप उहदे मूंह तों निकलदा है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। इस हर मंदर नूं भगती ते शक्ति दा सोमा समझ के दुनिया दे लोकां ने कई वारी बर्बाद करना चाहिया, पर जिन्हां ने बर्बाद करन दी कोशिश कीती समय दे नाल ओ आप ही बर्बाद हो गए। अहमद शाह बदाली उन्हें भी जदू देखिया कि सिखां दी शक्ति बड़ी वध गई, एक दिन इन्हां दा राज हो जाएगा, इस वास्ते सिखां नूं खत्म करन दी बड़ी कोशिश कीती, पर पेश ना गई। तां पता लगा कि हरिमंदर साहब सरोवर विच इशनान करके सिख फिर नवे नरोए हो जाते ने, शक्ति लेंदे ने। तां अहमद शाह अब्दाली ने सरोवर परवा दिता, बड़ा कुछ कीता, इथों तक कि मस्सा रंगड़ दरबार साहब के अंदर बैठ के हुक्का पीण लग पिया ते कंजरियां नचाण लग पिया। जदों सिखां नूं पता लगा ते खून खौल उठिया।

जे तुहाडा हर मंदिर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिन्हों ये पता लगे कि साडा हर मंदिर कैद है, असी हर मंदिर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरिमंदर साहब नूं आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखां ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपने जवाना दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखां नूं जान प्यारी नहीं, अपना हर मंदिर प्यारा है। अपनियां जाना वारियां अते बाबा दीप सिंह दा जदू सिर तों सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हर मंदिर नूं आजाद कराया। क्यों कि बाबा दीप सिंह जी जानदे ने ये गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर ता खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हर मंदिर नूं बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर ए ता गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करे

0: जाइए आप मुकत मोहिता।
1: आप जीवन पागे हो जो हफ्तावारी दीवान दी हाजिर करते हुए अपने लोक परलोक दे सुख दाते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच अपना जन्म सफला कर रहे हो। आओ जितना समा सतगुरु जी ने बख्शे है इस समय नूं सफलाउण दा यतन करिए। अपनियां मनवृत्तियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदे। जय प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गए मान पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवला वो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए पर अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु